0: तेना को मरा
1: मैं कवरा एच दे हूं
0: आता हुआ न तेने वया तने
1: मैं कहारा तो ता तो चुकू
0: क्यों रो माय डार्लिंग
1: मैं पिकी आके राते तो माता
0: मैं ता तो ते आंगा फका मुआ नहीं
1: फाया ते ओरा
2: Ko te reo o Shane Milne-Tera, me tāna waiata, ko whai a te oranga. Ngā wari noa te whakarongo nē, ka whakakapi I tēnei puhi ki tētahi atu hātere. Rangatahi tonu ana te kai waiata, ko Renzo tōnei ngua. Ngā tēnei waiata ia I rongo nui ai, I te tau e rua manu